0: सारे काम काज करूँ, तेरे गुस्से लेके ईगो का मसाज करूँ, तेरा जुर्म का जो खोया गलती है तेरी और थाने जाके एफआईआर में लॉन्च करूँ। जानती है कि मैं तुझे पैसे लाऊं ये जानती है, तेरी आत्मा को मिले तेरी शांति है, मुझे ऐसे काम पे लगा के पता ढूंढता रहूँ मैं तेरा जुर्म का।
1: अरे बहन के इतना बेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा रे।
2: झुमका

स्वर टंका माया श्रेष्ठ सुमी श्रेष्ठ र कविता सेन्चुरी को सुमधुर आवाज में शब्द संगीत नावा फिंजु पाखरिन एक चीज में केवल नाचने रमाउने मात्र होइन नारी का कथा र भावनालाई पनि महसुस गरौं।